0: यार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुनकरे वेर क्वारो
0: पियम चुनकरे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचो
0: बिमारा मैं पाचो
2: यूअन लंग यू बिरोटेला
1: इटी यूनियो और रेडियो।